आज जिन तीन जहाजों की कमीशनिंग हुई है उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है।

0: 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: इस सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होंगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है, यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरिटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरिटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं।
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: telling him not to drag the Dharmasthala temple in this row, and that the committee that has been formed will investigate this matter. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
4: Swing and a foul out of play off to the left.
3: Big 12 Radio.
5: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
3: Talk Sport.
6: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
3: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
7: 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत, देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है।

0: 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है, यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरिटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरिटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out. Co-powered by Suzlon, good energies that work.

0: Welcome back. You're watching India's Agenda on India Today. And right now we're getting some breaking news. This is regarding the Ram Temple loot. And there have been massive revelations in this probe. SIT has flagged lapses in Ram Temple cash handling. The SIT finds multiple security lapses. There was laxity in checks, which led to cash theft as per SIT. There was laxity in every step of donation process. SIT has also pointed to systemic lapses. It has flagged failures at every stage. So as per the SIT, cash counting process is now under SCALA. SBI's cash handling process is now under Lens. The private agency engaged for cash counting is also under Lens. The frisking norms were also not followed. The SIT investigation into the theft of offering funds from the Ram Mandir has pointed these lapses. It has uncovered gross negligence at every level. Now, the SBI, which was handling the banking operations for the Ram Mandir Trust funds, was responsible for sorting, bundling and counting the currency notes. SBI outsourced the note counting task to a private security agency by hiring its employees on contract. SBI had awarded the contract to a private security agency from Varanasi. The agency in turn hired local youths from Ayodhya. Acting on recommendations from individuals associated with the Ram Mandir Trust, the private security agency employed local youths from Ayodhya for the note counting work. So there you see how there were lapses on every step, on every stage there were lapses that have been uncovered by the SIT. Following the practice of hiring through personal recommendations, Anukalp Mishra secured a job for his brother-in-law, Lovkush Mishra, at the Ram Mandir Trust. Negligence regarding security checks and frisking during the arrival and departure of staff, negligence in checking employees as they left for home after their shifts. There was no monitoring of what items employees brought in or took out. Employees would sit in the Ram Mandir's trust room and count notes while wearing casual personal clothing. There was also negligence which was observed in the monitoring of the CCTV footage, and the employees would commit theft while standing right in front of the CCTV cameras. That has also been uncovered in this SIT probe. The prescribed dress code was also not enforced. The workers were in casual clothes while counting the notes. And a dress code had been established and uniforms provided, yet no one actually wore them.
1: एसआईटी पे प्रश्न चिन्ह लगाना ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अखिलेश यादव को इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, और इस तरह के यदि टिप्पणियां करते हैं तो अखिलेश यादव की भी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव यदि किसी भी एजेंसियों पर एसआईटी की जांच पे यदि प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उनको समझने की आवश्यकता हो, एसआईटी एक व्यक्ति के नहीं लगातार जाँच कर रही है, और किसी भी अधिकारी किसी भी पदाधिकारी।
0: And my colleague Santosh is now joining us with more details on this. Santosh, काफी बड़े lapses सामने आए हैं SIT की जांच में, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो uniform दिया गया था counting के लिए workers को, वो पहना नहीं जाता था, casual clothes में वो लोग counting करते थे, और CCTV footage CCTV के सामने ये पैसे चुराए जाते थे, checking भी नहीं होती थी इन लोगों की। तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी?
2: देखिए, बिल्कुल ये आगे की कार्रवाई एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि घोर लापरवाही सामने आई। जो ड्रेस कोड था उस ड्रेस बनाई गई थी, लेकिन ड्रेस दी भी गई थी लेकिन कोई ड्रेस नहीं पहनता था। इसके अलावा नोट गिनने और नोट की गड्डी बनवाने के दौरान जो लापरवाही होती थी, जो कर्मचारी इस पूरे प्रोसेस में लगे थे, जब वो घर जाते थे ड्यूटी ऑफ होने के बाद, तो उनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी कि वो जेब में पैसा लेकर जा रहे हैं या कोई चीज चुरा कर लेकर जा रहे हैं। ये बड़ा लैप्स था, सिक्योरिटी लैप्स कह लीजिए, चेकिंग फ्रिस्किंग का लैप्स था कि कोई आदमी अपनी जेब में क्या लेकर जा रहा है इसकी कोई जानकारी, कोई कभी चेकिंग नहीं होती थी। इसके अलावा जो लोग वहां पर जुड़े थे उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा था। जो लोग वहां पे एसबीआई का पूरा बैंकिंग के लिए ऑथराइज किया गया था, जो नोटों की गड्डी बनाने का काम है, नोटों को छटवाने का काम है, यानी उनको डिनोमिनेशन के हिसाब से अलग अलग गड्डी बनाने का, ये बैंकिंग का काम एसबीआई को दिया। एसबीआई ने इसको सिक्योरिटी एजेंसी हायर कर ली। सिक्योरिटी एजेंसी वाराणसी की थी, उसने अयोध्या के लड़कों को राम मंदिर ट्रस्ट के जुड़े लोगों की सिफारिश पर हायर कर लिया। उसी में तो ये तमाम लोग थे। बहुत बड़ा चेकिंग और फ्रिस्किंग का लैप्स होता है, सिक्योरिटी लैप्स भी था कि ये लोग बिना वेरिफिकेशन के लोग काम कर रहे थे, और उसके बाद ये जब चोरी होने लगी, ज्यादा चोरी होने लगी, तब ये मामला पकड़ में आया। तो एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें ये तमाम जो सिक्योरिटी लैप्सेस है, जो चेकिंग प्रैक्टिस में नेग्लिजेंस है, इन तमाम चीजों को मेंशन कर लिया है, और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को संभवतः दी जाएगी।
0: जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो मैसिव लैप्सेस हैव इमर्ज्ड इन द एसआईटीज रिपोर्ट ऑन द राम मंदिर लूट प्रोब व्हिच स्टेट्स दैट दीज वर्कर्स, द वेरिफिकेशन वाज नॉट डन. दीज वर्कर्स वर लोकल यूथ्स फ्रॉम अयोध्या, ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन टू अ वाराणसी एजेंसी एंड देयर वाज नो ड्रेस कोड व्हिच वाज बीइंग फॉलोड. दे यूज्ड टू डू द काउंटिंग ऑफ नोट्स इन कैजुअल क्लोथ्स. देयर वाज ऑल्सो नो फ्रिस्किंग दैट वाज डन व्हेन दीज वर्कर्स यूज्ड टू लीव फ्रॉम द टेंपल आफ्टर their shifts.

जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था।

0: आज जिन तीन जहाजों की कमीशनिंग हुई है उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था।

12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है।

0: आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्वभर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था।

योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है।

0: The Bengaluru NEET controversy has now taken a political turn. BJP accuses the Congress government of putting politics ahead of students, with MP of the Bharatiya Janata Party, Tejasvi Surya, alleging that a Congress event contributed to traffic chaos that left aspirants stranded outside exam centres. He's also targeted Rahul Gandhi, accusing him of shedding crocodile tears for students while his party chose exam day for a major rally. The Congress has hit back, with Karnataka ministers dismissing the charge as misinformation. A major cheating racket has cast a shadow over the NEET re-exam in Bihar. Police in Lakhisarai have busted an solver gang and arrested 24 people so far, including 5 medical students and several individuals linked to the examination process. Investigators say the network used proxy candidates and allegedly infiltrated exam centres by posing as biometric staff. The breakthrough came after an MBBS student was caught impersonating a biometric employee, triggering a wider crackdown. And going straight across to these pictures, coming in at this point in time, where MPs of the Shiv Sena, the UBT faction, are all set to join the Eknath Shinde faction of the Sena. Eknath Shinde also seen in these pictures at this point in time. It's a big political development from the state of Maharashtra. Uddhav Sena split now getting official. A massive jolt to Uddhav Sena camp. 6 of its rebel members of parliament there, all set to join Eknath Shinde faction of the Shiv Sena there. The 6 MPs are going to be inducted into Shiv Sena, and they will detail the reasons for this switch in a press conference, of which we are standing by at this point in time. This is going to begin any time now, as you can see in these images live on your screens at this point in time. Sena UBT, which is the Uddhav Thackeray faction, has 9 MPs, out of which 6 are switching over. And that means the anti-defection law will not apply on them. So no action is going to be taken against these MPs for switching over to the Eknath Shinde faction of the Shiv Sena. These MPs have signed a letter already forming a separate group and wanting to merge with the Eknath Shinde camp. This is the biggest and fresh setback for Uddhav Thackeray since the 2022 split within the Shiv Sena that was led by Eknath Shinde. Abhijit Karande is joining us for the very latest on that front. Abhijit, like I was just mentioning to our viewers at this point in time, after the split in 2022 that Uddhav Thackeray had to deal with, this is the biggest problem that, as you know, that he has to now handle at this point in time. It's a big embarrassment as well as a big setback.
1: This is really a big setback to the Uddhav Thackeray Shiv Sena, that Shiv Sena is splitting into two for second consecutive times within a 4 years of span. Right now, we are at YB Chauhan Center, where all 6 MPs along with Eknath Shinde have arrived here within a second. Eknath Shinde will start to address press conference here, and he will clear his stand. The MPs, I tried to spoke with Sanjay Jadhav, who is MP from Parbhani. I tried to spoke with Sanjay Deshmukh, who is MP from Yavatmal, and I try to understand why they left Uddhav Thackeray. So many MPs, like Om Rajay, told that he was not getting enough funds to develop his area, develop his constituency, and that's why he is leaving Thackeray. So I asked him also, but Sanjay Deshmukh confirmed that we are weak in development. We were with Thackeray, but we were not getting enough funds to develop our constituency, and that is why we are now decided to switch to the Eknath Shinde. Eknath Shinde is a deputy chief minister of Maharashtra. He is in power since 2022. He was chief minister for more than two years. So he is having a strong portfolio like urban development ministry. So he has that capacity to
0: be with us. I'm just going to come back to you in a moment. From now, listening to what Eknath Shinde
2: एक वाक्य मना लो तुम्हें तर आता एक नाही सहा टायगर इथे उपस्थित आहे. आणि त्यांचा एक मिनिट तुम्ही या तिकडे तुम्ही या तिकडे
0: मोर ऑन दॅट बट दीज आर इमेजेस of Eknath Shinde along with six MPs were all set to now join the Eknath Shinde faction of the Sena. The biggest crisis that Uddhav Thackeray perhaps is dealing with at this point in time after the split of the scene earlier in the year 2022. Images of six MPs I can see on your screens with Eknath Shinde all set to join the Eknath Shinde camp. They're now joining the Shinde Eknath Shinde camp of the Shiv Sena. There's trouble there clearly mounting for Uddhav Thackeray at this point in time, where you have of 9 MPs, 6 of them joining Eknath Shinde, moving away from him. The reasons are many. Assembly leaders,
2: काय तुम्हाला नंतर काही प्रश्न उरायला नको म्हणून मी केले सगळं. काय काय मीडियावर काय काय चालवत असतात ना. आता आज सहा खासदार नाव मगाशी घेतली आहेत, मी पुन्हा घेतो. माझ्या बाजूला ओमराजे निंबाळकर आहे. आपला सगळ्यात लाडका संजय इकडे संजय मंडू जाधव आहेत. एक बॉस म्हणतात इकडे. इकडे संजय देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत. म्हणजे ट्रिपल संजय,
3: तीन संजय,
2: तीन संजय. आता बघा आपल्याकडे तीन संजय आहेत. कोणाला घ्यायचं नाही. आमच्याकडे चौथा संजय राठोड आहे. भरपूर संजय.
1: अरे नाही आवाज नाही आ रही.
2: आता त्यामुळे बाकी मी कुणाच्या बद्दल बोलतोय ते सांगायची आवश्यकता नाही. आता इथे ट्रिपल संजय असल्यावर मग बाकी कुणाची गिनती आपल्या संजय बद्दल नाही. आपले खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार परिषदेला उपस्थित पत्रकार परिषदेत उपस्थित आपले शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदमजी, आपले दुसरे नेते गजाभाऊ कीर्तिकर, तिकडे गुलाबराव पाटील आणि बाकी सर्व आपले मंत्री आहेत. समोर मागे मंत्री आहेत, बाकी आपले खासदार आहेत सगळे. शिवरंगाप्पा आहेत आणि सगळा आपला समोर खासदार आहेत, आमदार आहेत, सर्व आमचे हे शिवसेना आहे, कुटुंब आहे, परिवार आहे. हा एक परिवार या आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये, खऱ्या शिवसेना परिवारामध्ये, बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये, धर्मवीर आनंदगी साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये आज हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झालेले आहेत. त्यांचं मी मनापासून शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो. आणि गेले 22-24 वर्षापूर्वी अरे ते आपण हे राहिलं ना ते प्रक्रिया करायची बोलल्यावर चालेल ठीक आहे. चार वर्षापूर्वी 22 जून 2022 मला वाटतं शिवसेने आम्ही उठाव केला होता. 40 आमदार सोबत सुरुवातीला होते आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मारलेला आहे. काय म्हणतो त्याला शिक्षक. अगोदर आपण 2022 साली शिवसेना पक्ष वाचवण्यासाठी धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी बाळासाहेबांचे विचार वाचवण्यासाठी तो उठाव केला होता आणि आता दुसरा टप्पा सुरू झालेला आहे. हा दुसरा टप्पा आहे. आपला लढा हा बाळासाहेबांच्या विचाराचा आहे, हिंदुत्वाच्या विचाराचा आहे आणि हे विचार जपण्याचा आहे. आणि म्हणून जिथं शिवसेनेचे विचार तिथं शिवसेने. आणि म्हणून आज 6 खासदार यांनी
3: यहां पर 6 शेर उपस्थित है. मैं 6 शेरों का शिवसेना में स्वागत करता हूं.
2: शामिल होण्याचा निर्णय घेतला आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये आणि खरं म्हणजे मीडियावर काही उलट सुलट
3: and this is not of course this is a fixer that we have taken
2: आरोप प्रत्यारोप करतात. मी त्यांना सांगू इच्छितो खरं म्हणजे हे सगळे लोक जे 6 खासदार आहेत बंडू जाधव असतील इथले ग्रास रूटला काम करतात.
3: प्रत्येक एमपीज आर वेलकम into Shivsena.
2: प्रेमाने आणि अगदी जमिनीशी
3: एमपी
2: घट्ट नाळ जपणारा बांधिलकी जपणारा हा खासदार आहे. त्याचबरोबर
3: this is the real Shivsena. The 6 MPs are welcome in the real Shivsena now.
2: तपन बिंदास आणि बेलडक आहे.
3: The original Shivsena.
2: आणि दोस्ती यारीसाठी उत्तम आहे. आणि संजय पाटील हा खरा दिनांचा कैवारी आहे. संजय दिना पाटील नाव आहे. प्रत्येक जणामध्ये एक वेगवेगळे गुण आहेत. ओम राजे तर आपल्या मनाचे राजे आहेत. त्यांनी जेव्हा निश्चय केला बऱ्याच वेळा सगळे प्रयत्न पण त्यांनी मनात निश्चय केला आणि ते देखील एकत्र आले यांच्या बरोबर. खरं म्हणजे त्यांनी काल परवा 3-4 दिवसामध्ये कार्यकर्त्यांशी बोलणं केलं. कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली आणि मतदारसंघात विकास झाला पाहिजे, कामं झाली पाहिजे, कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे हे सगळं ऐकून घेतलं त्यांनी. त्यांची सगळी प्रक्रिया मीडियावर चालली आणि काही लोकांनी त्यांना हिनवलंही पण त्यांनी काही लक्ष दिलं नाही. तिकडे रिल स्टार म्हटलं त्यांच्याकडे होते तेव्हा चांगले होते ते रिअल स्टार. मी सांगतो ते रिअल स्टार आहेत. खरंच कार्यकर्त्यांचा एक कार्यकर्त्याचा ग्रासरूटचा नेता कसा असतो. दुसरे आमचे संजय देशमुख अधिकारी संजय उत्तमराव देशमुख यवतमाळ वाशिम मतदारसंघात त्यांचं कामही उत्तम आहे. उत्तमराव आहे वडिलांचं नाव. म्हणून ते आपल्या
3: शिवसेना
2: आता कोण राहिला. अष्टीकर तर आपला काय
4: बिंदास है ओपनिंग बॅट्समन, तो कोणाच्या आद्यात मध्यात जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर जाल तर त्याचं नाव नागेश आहे. प्रत्येकाचं एक विशेष काहीतरी आहे. इथे भाऊसाहेब
5: आहेत,
4: गावात पण वाघ आहे आणि भाऊ आहे. म्हणजे भाऊ आपला लाडकी बहीण योजना राबवणाऱ्या बरोबर यायलाच पाहिजे. त्यामुळे हे असे कार्यकर्ते आणि हे स्वतःच्या फायद्यासाठी स्वार्थासाठी कुणी आलेलं नाही. मतदारसंघातल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी, विकासासाठी हे सर्व लोक शिवसेनेत आलेत. ओमराजेंचं दुसरं देखील वडिलांचं जे केस होती, दुर्दैवाने दुर्दैवी निकाल लागला, अनपेक्षित निकाल लागला. मी त्या दिवशी त्यांना सांगितलं, एकनाथ शिंदे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. काही लोक म्हणतात आम्ही
3: ओमराजे नेंबाळकर फादर्स मर्डर,
4: शिवसेना वाढवायला
3: द जस्टिस द ऑर्डर दॅट केम आउट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड.
4: आमचे कोणी आडवाई होऊ नये,
3: बट शिवसेना इज स्टँडिंग विथ यू.
4: त्यांनी सांगितले आला नाही
3: करा
4: त्या शिंगाव. आणि मग 2022 चा देखील उठाव आपण पाहिलेला आहे.
3: सम पीपल से दॅट
4: त्या काळात देखील आपण पाहिले.
3: सम पीपल से दॅट
4: आणि देवाने सोडून दुसरा विचार जेव्हा आला त्यावेळेस आम्ही तो उठाव केला.
3: अँड ऍज पर बाळासाहेब सेइंग
4: तेव्हा काय परिस्थिती आपण सगळ्यांनी पाहिली. 2.5 वर्ष या राज्यामध्ये काम झालं, विकासाचं काम.
3: ऑल्सो वी हॅव सीन दॅट
4: महाराष्ट्र
3: फॉर द आयडियोलॉजी ऑफ बाळासाहेब
4: अनेक योजना, लाडकी बहीण योजनेसारखे शेतकऱ्यांच्या,
3: वेन पीपल स्टार्टेड ऑपोजिंग इट ऑर वर नॉट फॉलोइंग बाळासाहेब आयडियोलॉजी वी लेफ्ट देम,
4: तो सर्वसामान्य जनतेने स्वीकारला.
3: फॉर 2.5 इयर्स
4: आम्ही
3: इन महाराष्ट्र देर वॉज डेव्हलपमेंट दॅट हॅपन्ड.
4: लोकांमध्ये गेलो आणि जनतेने
3: बाळासाहेब आयडियोलॉजी वी लेफ्ट देम,
4: तो सर्वसामान्य जनतेने स्वीकारला.
3: फॉर 2.5 इयर्स
4: आम्ही
3: इन महाराष्ट्र देर वॉज डेव्हलपमेंट दॅट हॅपन्ड.
4: लोकांमध्ये गेलो आणि जनतेने देखील या महाराष्ट्र
3: वी हॅव ब्रॉट इन स्कीम्स लाईक लाडकी बहीण योजना
4: त्याचं
3: अँड अदर सच स्कीम्स अँड द डिसिजन दॅट वॉज टेकन इन 2022 पीपल हॅव एक्सेप्टेड दॅट.
4: म्हणाले काही निवडून येणार नाही, पण मी त्यावेळेस म्हणालो होतो
3: वी वेंट इन टू पीपल
4: जर निवडून कोणी आलं नाही तर
3: अँड महाराष्ट्र पीपल महाराष्ट्र वोटर्स एक्सेप्टेड इट.
4: 40 आमदार होते, 60 आमदार
3: वी हॅड 40 MLAs
4: गावी गेलो की पोटदुखी
3: अँड पीपल वुड से दॅट नन ऑफ देम वुड बी इलेक्टेड अगेन बट आय हॅड सेड देन ऑल्सो
4: लोकांच्या जनतेच्या
3: दॅट
4: दरबार
3: आय हॅड सेड दॅट इफ these MLAs do not get re-elected I will leave politics and go back to my village. We had 40 MLAs then and 60 MLAs were then re-elected or elected in the elections.
4: Ati chanda te banda paryant shivasena moti zali ha itihas apan
3: people gave us a mandate, people supported us, people stood behind us. We had MLAs, MPs, there were mayors who were elected, there were Jilla Parishad presidents who were elected. And Shiv Sena grew from Chanda to Banda.
4: Shiv Sena, Bhajap Chi, Bhajap.
3: And this is the history of just 2 to 3 years. Our policy was clear, our policy was transparent.
4: But the idea is important.
3: We took the ideology forward. The Hindutva ideology was taken forward.
4: And
3: the Shiv Sena BJP alliance which Balasaheb took forward. And that is why we joined the alliance. And that is why ideology is important. Some people left the ideology and Maharashtra then did not give mandate to them. Maharashtra is different from other states. Our culture is different. Our traditions are different. We have given people what people had in their minds. See, in how large numbers people are joining us, people have joined us. The reason behind that is the agenda is for development. Our agenda is for development. Our agenda is to work for the poor, to bring about development, to uplift the poor. And we keep our words. We keep our words, and that is Shiv Sena. That is why, in large numbers, people are joining us.
4: त्यामुळे त्या ठिकाणी देखील आमचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते शिवसैनिक
3: नाउ दीज सिक्स एमपीज हॅव जॉइंड अस
4: आणि हे सगळे सहा लोक
3: दे विल बी वर्किंग इन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर द लॅक्स ऑफ सिटिझन्स
4: त्या ठिकाणी शिवसेना अधिक बळकट
3: दे वर इलेक्टेड बाय देअर कॉन्स्टिट्युएन्स
4: खासदार आपल्याकडे
3: वोटेड फॉर देम इन लॅक्स
4: त्यांच्या मतदारसंघातली कामं
3: Our office bearers, Shiv Sainiks, people from these constituencies and these six MPs. Shiv Sena will be much stronger, will be even more stronger now. And the six MPs who joined us, the constituencies, their constituents, development, the work that was pending.
4: मी मुख्यमंत्री होतो त्याही वेळेस कार्यकर्ता
3: म्हणून शिवसेना विल वर्क फॉर देम अँड दिस इज अ वर्ड ऑफ एकनाथ शिंदे
4: त्यामुळे हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे
3: अँड आय कीप माय वर्ड यू नो दॅट
4: सगळे सहकारी आहोत सर्व माझे खासदार आता जे
3: दॅट इज वाय महाराष्ट्र
4: त्यांना मी एवढंच सांगू इच्छितो
3: बिलीव इन एकनाथ शिंदे ऍज अ कॉमन वर्कर अँड आय हॅव बीन वर्किंग ऍज अ कॉमन वर्कर ऑफ द पार्टी
4: सर्व कार्यकर्ते म्हणून आपण काम करणार आहोत
3: त्यामुळे एकनाथ शिंदे देखील
4: तुमच्या सोबत कार्यकर्ता म्हणून मान सन्मान देईल आपला
3: ऑल द एमपीज ऑल द सिक्स एमपीज हू जॉइंड अस आय वॉन्ट टू टेल देम
4: तुमच्या असलेल्या कार्यकर्त्यांचा मान सन्मान राखला जाईल कुठेही अनादर होणार
3: नाही एव्हरीवन वर्क्स टुगेदर ओव्हर हियर परिवारामध्ये वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर
4: त्यामुळे
3: There is no boss over here.
4: पुढची वाटचाल या ठिकाणी करू आणि
3: पीपल विल ऑनर यू द कॉन्स्टिट्युएन्सीज इश्यूज विल बी सॉल्व्ड
4: जे जे काही विकासासाठी आवश्यक आहे आपल्या
3: देयर विल बी नो डिसऑनर
4: आवश्यक ज्या बाबी आहे
3: वी हैव कम टुगेदर इन वन फॅमिली
4: हे डबल इंजिनचं सरकार आहे राज्य आहे केंद्रीय आणि डबल इंजिन सरकार
3: विल बी वर्किंग एज अ फॅमिली
4: आपली काम होती आपल्या अडचणी सुटतील आणि म्हणून ज्या विश्वासाने आपण आज सोबत आलेला आहात हा विश्वासाला कदापि तडा हा एकनाथ शिंदे जाऊ देणार नाही हा शब्द आहे आमचे सर्व नेते
3: शिवसेना The government in state as well as the center. And our work will be done. The issues of the constituency will be resolved. And you have believed in us. We will never let you down. All the MLAs, MPs, ministers, they will be meeting you. There will be a meeting with all the MPs, MLAs and ministers. And all the issues where we need help of the center, we will also try to resolve that. There will be no issues.
4: या महाराष्ट्रामध्ये अधिक भक्कम अधिक
3: शिवसेना
4: होईल हा विश्वास या ठिकाणी
3: वी हॅव टू मेक शिवसेना इव्हन स्ट्रॉंगर.
4: पत्रकारांनी मी या ठिकाणी
3: वी हॅव टू मेक शिवसेना रीच इच अँड एव्हरी विलेज इच अँड एव्हरी होम.
4: ऑपरेशन टायगर
3: अँड दॅट इज वाय एव्हरी वन्स हेल्प इज नीडेड, एव्हरी वन्स कॉन्ट्रीब्युशन इज नीडेड.
4: पण मी आपल्याला
3: दॅट इज वाय
4: मी कालही
3: इन महाराष्ट्र
4: इव्हन
0: Okay, we are shifting focus at this point in time and getting you these developments from the state of Uttar Pradesh, where a deadly inferno at a gaming zone in Lucknow city, the capital, has in fact at least 14 youngsters have been killed. It has taken the life of 14 people is what we are learning. The death toll has risen and these are 12 youngsters that have been killed is what we know. The victims are between the ages of 20 to 24. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister broke down as the death toll rose. Chief Minister Yogi Adityanath has taken stock and also rushed to Lucknow city. Majority of the victims are between the ages of 20 to 24. These were youngsters who have been killed. Remember, we broke the story for you about a man also earlier who was seen jumping out of that building that caught fire on your screens at this point in time. Also to advise viewer discretion, these pictures would be disturbing for our viewers, some of our viewers. Listening to what the Deputy Chief Minister said.
5: यही बच्चे 16 17 साल 15 हाँ कोचिंग के थे
6: सर. आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं,
5: सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे
6: हैं. बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी?
5: अभी यही बच्चे 16 17 साल 15 हाँ कोचिंग के थे
6: सर. आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं,
5: सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं.
6: बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी?
5: अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई?
6: बहुत नाजुक पल
5: अभी हमारे बच्चे बचे हैं. अभी ये सब नहीं पता मुझे, मैं आग लगने के बाद पहुँचा हूँ. अब घटना बड़ी है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं. प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने इसके कड़ी कार्रवाई करें.
6: बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना,
5: बहुत बड़ी घटना है.
6: 15 बॉडियां बाहर निकाली गई
5: जी, 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा.
6: सर एक बहुत पल है आपके लिए
5: जी.
0: Right, we also have an update on that. There are 14 people, unfortunately, who've lost their lives in this horrific accident that has taken place in Lucknow. Of course, investigations will throw up more details. But to tell our viewers, the Prime Minister has also spoken about it and said that he's anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow, Uttar Pradesh. He said, my condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance. An ex gratia from 2 lakh rupees from the Prime Minister's NRF, which is the Disaster Relief Fund, would be given to the next of the kin of each deceased, is what the Prime Minister's office has said. Those injured would be given 50,000 rupees, is what the Prime Minister has indicated. I'm going straight to Samarth on that tragic story that he's tracking. Samarth, 14 bodies have been retrieved. It's an unfortunate accident that you're reporting on. What are the other details that you can share with us at this point in time as far as the relief work is concerned, rescue work is concerned here?
7: और भी लोग पेट्स हैं,
8: बहुत सारे पेट्स हैं जो अंदर अभी सफर कर रहे हैं. एक एक करके सबको निकाला है. इसका बच्चा भी है जिसको आगे भेज दिया गया है. और ये
7: टोटल कितने पेट्स हैं चारों अंदर?
8: अंदर कम से कम 20-25 पेट्स हैं.
7: 20-25 पेट्स हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारू खड़े और 20-25 पेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं. ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, यानी कि जो पेट शॉप थी वहां पर 20-25 पेट्स भी थे और कुछ को बचाकर अब यहाँ जो पशु प्रेमी है वो यहाँ से ले जा रहे हैं. ये एक और बड़ी अपडेट यहाँ से फिलहाल देखने को मिल रही है. तो यानी कि जो इंसान है वो तो है ही. डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से 14 बॉडीज को जाते हुए यहाँ से देखा है. इसके अलावा और यहाँ पर फिर से एक बार जो है मूवमेंट होता शुरू हो गया है, होना शुरू हो गया है. और तस्वीरें देखिए और पेट्स जो है वो अब पेट्स को भी रेस्क्यू किया यहाँ पर जा रहा है. यानी कि इंसान तो इंसान, जानवर भी जो है कहीं ना कहीं इस आंख की जद में आता दिखाई पड़ रहा है। तो ये इस तरह की तस्वीरें फिलहाल लखनऊ के अग्निकांड से यहाँ देखने को मिलती हैं कि इंसानों के अलावा पेट्स भी जो हैं यहाँ उसमें फंसे हुए थे, जिन्हें अब रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि नीचे एक पेट शॉप थी और ऊपर एक गेमिंग जोन था, तो यानी कि दोनों ही जगह लोग थे, कुछ बचे कुछ नहीं। KGMU का नंबर जो है वो 6 है। डिप्टी CM ने कहा कि मैंने अभी 14 बॉडीज जाते हुए देखा है। अभी ऑफिशियल जो पुष्टि है वो अस्पताल की तरफ से होने वाली है। जी
0: Samarth, with the very latest on that story. Samarth, if you can hear me, you were telling us about the loss of lives. There 14 people have died. What about anybody inside the building as of now? What about the rescue work? I can't see Drools. That's a pet shop. It's a famous chain of pet shops across the country. And that's where the pets are being rescued from. On your screen, images of a man who jumped out of the building. Tell us, what's the very latest as far as the rescue work is concerned? Anybody else trapped inside? What's next to Drools? I see something that resembles some sort of a clinic there. What are the other details that you can share about the location and what's happening at this point in time?
7: See, the rescue operation is still on here, and can clearly see the NDRF forces have also joined the hands in with the local authorities. And is this cameraman Gaurav will show you the visuals out here that we showed you how the pets were also being rescued along with the humans out here. Our total number has gone to 6 as per the KGMU, but the point is that with some other hospitals have also been selected for the particular admission of these particular patients. Deputy CM Brijesh Pathak, while speaking to media, has said that he has seen a total of 14 bodies moving out from his place. So it's going to be worth seeing what the actual number is by the doctors, because KGMU is claiming that there are many who have come here. They are injured. So injured and severely injured, we'll have to see what doctors have to say about them. While some have been brought dead, and the number is 6 by KGMU, the hospital in Lucknow. As you see the visuals, the entire police force has gathered out here in the large numbers. The fire tenders have gathered here in the large numbers. The ambulances are here, Deputy CM, commissioners, DGP, and what we are getting, that CM Yogi Adityanath has also halted his Aligarh visit and is reaching Lucknow. He may also visit this particular place, as ACS home and Sanjay Prasad is also at the spot. As you see, that one after another ambulance is making queue right over here. I'm reporting since last 3 to 4 hours, and I have seen more than 6 to 7 ambulances moving across from that area, because that is one building. And after the rescue, either the dead body or the body of injured comes down and being placed inside the ambulance, and later the ambulance and with the police security moved across that particular place. So that's a bigger thing out here. We are seeing the numbers in large numbers, and you can clearly get the sense what actually is happening out here in Lucknow's Ali Ganj. That's a big thing. The lapses needs to be find out. What are the lapses? What actually happened right over there? Some of the officers are also there. Some of the officers are also there right over here. As you clearly see and understand, the situation is tense out here. And as CM has clearly said, that the strict action will be taken in this particular incident. Back to you.
0: Yes, this is a gaming zone, isn't it, Samarth? And that's the reason why it's expected that those who would be affected here, killed or injured, would be youngsters. The deputy chief minister, while informing about 14 bodies that he'd seen, he broke down. You can take a look at these images on your screen at this point in time. On the left side is where the man jumped out of the building, fell down, visibly hurt. Others picked him, carried him away.
9: और किसी भी स्थिति में सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब क्लासरूम्स में कोई नहीं है। अब जो फर्नीचर गिर गया है, फर्नीचर को उठा उठा के देखा जा रहा है, कहीं अंदर बच्चे कोई दबे तो नहीं है। और एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। हम लोग अभी मौके पर ही है, और सारी एम्बुलेंसेज और चिकित्सा अधिकारी भी तत्काल चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए मौके पर अस्थायी रूप से, अगर आवश्यकता किसी को तत्काल है तो यहीं पर उसको इलाज किया करके उसको भेजा जा रहा है। अभी 12 से 14 बच्चों को हमने KGMC ट्रामा सेंटर भेजा है।
0: उत्तर प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, दे अर्लियर ही ब्रोक डाउन व्हाइल इन्फॉर्मिंग द प्रेस।
7: आपने कहा कि 12 बच्चों की,
9: ये एनिमेशन सेंटर है, ये कंप्यूटर पर बैठ करके बच्चों को एनिमेशन की फिल्म या एनिमेशन कार्टून बनाना सिखाते थे, और उस घटना कैसे हुई, आग कैसे लगी, इसका अभी जानकारी बाद में मिल पाएगी। और उसमें अचानक आग भड़की पीछे की, आगे की ओर, और बच्चे सभी पीछे भागे, और पीछे धुआं अधिक था, इस वजह से ये घटना घटी।
10: नहीं, कितने बच्चे अंदर हो सकते हैं इस वक्त, इसकी कोई जानकारी है क्या?
9: जो गेमिंग सेंटर चला देते हैं उनसे कोई जानकारी मिल पाई? लिया गया है, अभी जो है 4 बच्चे घायल हैं, वो केजीएमसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, और जो पूरी तरह से हताहत हुए बच्चे जो होश में नहीं थे, ऐसे 12 से 14 बच्चों को भी अभी एम्बुलेंस में बिठा करके रवाना किया है।
10: ठीक है, तो कुल मिलाकर जो ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम है वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से 4 बच्चे अभी भी घायल स्थिति में है, 12 बच्चों की मौत हुई हो सकती है और 14 बच्चों को दम घुटने से फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये आग की तस्वीरें लपटे आप देख रहे हैं एक बार फिर, ब्रिजेश जी मैं कंफर्म कराना चाहूंगा कि कितने बच्चों की मौत हुई है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं? आपने कहा कि 12 के करीब करीब ये आंकड़ा हो सकता है और 14 बच्चों को भर्ती किया गया।
9: घटना है, भयावह घटना है, 12 से 14 के बीच का ये आंकड़ा हो सकता है, एग्जैक्ट आंकड़ा अस्पताल से पता चलेगा, लेकिन 12 से 14 बीच का आंकड़ा हो सकता है,
10: 12 से 14 के बीच का ये आंकड़ा हो सकता है। बहुत ही दुखद और भयावह घटना यहाँ पर ब्रिजेश पाठक हमें बता रहे हैं,
9: हम सब बहुत ही दुखी हैं और पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हम सब साथ में पीड़ित परिवारों के साथ में खड़े हैं।
10: इसके जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिरकार ये सेंटर किस तरीके से चलता था,
9: जांच के निर्देश दे दिए हैं और घटना के कारणों के साथ साथ पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं के न हो, कड़ाई से पालन हो मानकों का, और हर स्थिति में इसको कैसे और व्यवस्थित किया जा सकता है, और ये किसी अफसर की जिम्मेदारी पाई गई तो उसको जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे।
10: तो गृह सचिव इस वक्त मौके पर है, आप कह रहे हैं और आप खुद भी वहां पर मौके पर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए हुए हैं, ये भी खबर इस वक्त आ रही है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है इस पूरे घटना को लेकर। सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके लिए कोई राशि की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, जो पीड़ित है या जो मारे गए हैं और बाकी
9: इलाज मिले और थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, तो पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हर स्थिति में जो भी आवश्यकता है हम पूरी परिवारों के साथ खड़ेंगे, मदद करेंगे।
10: बहुत बहुत शुक्रिया,
9: हमारे परिवार के
10: आपने ये जानकारी,
9: हमारे परिवार के बच्चे, किसी भी बच्चे का जाना हमारे लिए बहुत ही मतलब दुखद है, और मैं मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन घटना पुनरावृत्ति न हो और घटना के जो भी दोषी पाए जाएंगे, कैसे घटी, क्यों घटी, पूरी जांच करके हम बताएंगे।
10: शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी, आपने इस जानकारी दी इसके लिए।
0: You heard that from the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak talking about the current situation, saying that accountability is going to be fixed. Also informing, unfortunately, that 14 youngsters between the ages of 20 to 24 have lost their lives. There's a pet shop right below that gaming zone from which many pets have also thankfully been rescued. We have initial information as of now. Some of these pictures that we're playing out for you are from a while ago. Some pictures are live. We do advise viewer discretion. It's an inferno, a fire that we're reporting on from Lucknow city. And these images could distress some. Pictures are of the rescue work that is underway. Also, the manner in which a man then jumps out of a building, that particular building that caught fire to save his life, visibly injured. But then he receives assistance from the people who are standing by there. And they then take him away to safety. As you can see in these images, 14 people have died in that blaze. Remember, not the first time and unfortunately not the last where incidents of this kind are reported from across the country. Not just Lucknow, we saw a couple in Delhi just about 10 odd days ago. One incident in Delhi as well where 22 people lost their lives. Before that as well, we've seen separate incidents of fire that have been reported from various cities, particularly in summer months, which is extremely common. This one is from Lucknow city, the capital of Uttar Pradesh, at a gaming center, at a gaming zone, which was on the first floor of that building that had a pet shop called Rules right below it. Because the fire has, in fact, killed 14 people. Several of them have been injured, is what we know. Listening to what the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, has had to say about this entire incident.
11: मेरी हार्दिक इच्छा थी यार कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत, प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पर जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
0: You heard there from the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who just announced that he was, in fact, at a program in Aligarh, and he is now headed back to Lucknow because of this horrific incident that has been reported from the capital city in Lucknow, where a gaming zone, in fact, was in a fire incident, as you can see in these pictures. The rescue work, the fire dousing operations are still, and the cooling operations are still underway, is what we know. Prime Minister Narendra Modi has expressed his condolences as well. 14 people, 14 youngsters have died in this horrific accident is the latest figure we have with us. Several of them have been injured. Expressia payment has also, relief has also been announced for the victims of this tragedy and also for those who have been injured. Of course, the cause of the fire is going to be investigated in great detail, but this isn't the first time a fire of this kind has been reported from a major urban center. This time it's in Lucknow. 10 days ago it was in Delhi. Several incidents in the past of such similar incidents of fire reported in summer months. Images are of the cooling operations underway at this particular site where the fire broke out. On the left side of your screen, you see that image that has since gone viral, speaking volumes of the horrific situation there, where a man jumped out of the building to save his life, injured clearly in this process, but immediately onlookers rushed and helped him, as you can see in these pictures. On the right side, you see images of victims of this tragedy being taken away. NDRF also assisting in the rescue work. Several have been injured, including several firefighters have been injured as well. As you can see clearly in these images at this point in time, during the course of dousing the fire and helping those who could have been possibly trapped in that ill-fated building in the heart of Lucknow city. 14 people have lost their lives is what we know at this point in time. Brijesh Pathak, the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister, while in fact clarifying that 14 bodies is what he had seen, broke down. The government has said that accountability is going to be fixed. Images are on your screen from Lucknow.
12: क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे, लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब वहाँ पर पूरा सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और ऊपर अब कोई भी बच्चा नहीं है, वहाँ कोई भी हताहत नहीं है, पूरी तरह से बिल्डिंग को देख लिया गया।
13: सर, जो जिम्मेदार लोग रहेंगे जांच के बाद उनके ऊपर किस,
12: हाँ, कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी
0: We'll continue to get you more details on that big story that we're tracking very closely. For the moment, it's a wrap on this edition. This continues on the other side.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
3: Swing and a foul out of play off to the left.
2: Big 12 Radio.
4: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
2: Talk Sport.
5: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
2: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
6: बारह साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होंगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे।

0: Let's get you a quick update coming in on the Lucknow fire tragedy, where police sources have confirmed to India Today that the fire was caused by a short circuit. More details are expected in the next few hours as the investigation progresses. There are other causes that are being investigated, including why all of those who were inside the building couldn't get out. Was there no fire exit? We're expecting answers on that. Chief Minister Yogi Adityanath is expected there at the tragedy site any time now. So we're standing by for those images as well. Yogi Adityanath was in Aligarh, cut short his visit to be there in Lucknow after the news came in of this tragedy. He's also going to be visiting the hospital to meet with those who've been injured. But the information that we have right now is that this was a tragedy. This was a fire that was caused by a short circuit. But there are so many other questions that remain unanswered right now as to why 15 lives were lost. If there was proper fire safety norms protocol in place, maybe we wouldn't have seen such a big number of casualties. Images on the left of your screens is another video shot by an eyewitness that gives you a sense of the chaos that broke out. In this image, it looks like this was right after the fire that broke out. You can't see the place, but thick smoke emanating from the windows there. You can see, Samarth will get us more on that. Samarth, you're at the spot. So we can see essentially that the front facade of the building is fully glass, which is why one individual perhaps jumped out. Nobody else could escape.
1: अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं. अगली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां पहुंच रहे हैं. सारा पुलिस अमला, डीजीपी, एसीएस होम संजय प्रसाद, सारा पुलिस अमला यहां मौजूद है. तो घटना स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी सबसे पहले यहां पहुंचती है और उनके ठीक पीछे आप देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री नजर आएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जायजा ले रहे हैं घटना स्थल का, जहां ये पूरी घटना हुई है. पूरे घटना स्थल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेते नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने जो फायर के अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगाई है. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इस वक्त जो है मौके पर मौजूद है और कुल मिलाकर वो देख रहे हैं, परख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर अग्नि तांडव हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अधिकतर युवा बताए जा रहे हैं, जिसमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं या लड़कियां बताई जा रही हैं. तस्वीरों में आप खुद देखें और समझें, ये पूरी इमारत है और इस पूरी जगह के आसपास इस वक्त जो है खास सिक्योरिटी लगा दी गई है. और मुख्यमंत्री कुल मिलाकर समझ रहे हैं, यहाँ पर एसीएस होम संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्णा, पूरा प्रशासनिक और पुलिस अमला आपको इस वक्त यहां पर नजर आएगा और उसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं और लगातार वो समझ रहे हैं कि आखिर ये घटना किस तरीके से हुई है. जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल पाई है, मुख्यमंत्री इस घटना से काफी नाराज हैं और उन्होंने बाकायदा जो फायर के अधिकारी हैं उनकी फटकार भी लगाई है. इसके बाद केजीएमयू भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, जहां परिजनों से वो मुलाकात करेंगे. हादसे के जिम्मेदारों को किसी भी हाल में ना बख्शने के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं. आपको बता दें, अलीगढ़ का दौरा था, वो बीच में छोड़कर वो यहां पर पहुंचे हैं. तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं. मुख्यमंत्री स्पॉट पर पहुंचे हैं जहां ये पूरी घटना हुई है और इसके अलावा अब वो यहां से सीधे केजीएमयू जाएंगे और खासे नाराज घटना को लेकर इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है यूपी में पहली घटना है. कुछ दिन पहले आपने देखा गाजियाबाद में इस तरह की घटना हुई थी, एक सोसाइटी में फिर इस तरह की घटना हुई थी. तो इस तरह की घटनाएं बैक टू बैक हो रही हैं. फायर एनओसी था या नहीं था, फायर एग्जिट जितना दिखाई पड़ता है फायर एग्जिट भी यहां पर नहीं था. आप समझें कि जब यहां से ग्लास तोड़े गए तो उसके बाद जो है यहां से लोग जो है भागे हैं, कुछ कूदे हैं, एक लड़के की रीढ़ की हड्डी टूट गई है जिसका इलाज चल रहा है. तो इस तरह की घटना यहां सामने आई है. फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं और इस वक्त जो है वो जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों से समझ रहे हैं क्या नुकसान हुआ है, क्या संख्या है, कितने घायल हैं, क्या गंभीरता है, क्या बिल्डिंग का एनओसी पास था कि नहीं था, क्या ये सही जगह बनी है कि नहीं बनी है, लीगल है कि इलीगल है. इन सब चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों से लेते नजर आ रहे हैं और इस बीच में फायर के जो अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगाई है. कई आई विटनेसेस ने दावा किया कि फायर टेंडर्स आधे घंटे या 25 मिनट यहां पर देरी से पहुंची, अगर समय से पहुंचती तो शायद कई लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी.
0: So that's Samar Srivastava reporting live from the spot there. You can see Chief Minister Yogi Adityanath has now reached the tragedy site, getting a briefing of exactly what happened. You can see the Deputy Chief Minister Brijesh Pathak next to him, as well as top officials, including the UP Top Corp, the DGP present there, all of them briefing the Chief Minister on exactly what led to this tragedy. And one of the questions that will constantly be asked is whether the norms were followed. Why were all of the students who were inside unable to escape, unable to get out? And that will be a question that the Chief Minister will also seek answers on, because he's already maintained that those accountable for lapses will be brought to book, will be identified. You can see essentially the remnants of the building as well that the Chief Minister is looking at, completely charred. Nothing left to offer, but the fire has been doused. It broke out. In fact, you can see in the images also in one of the windows that we have on our screens that the fire had broken out to the second floor and there were thick plumes of smoke that emerged. Nobody was there at that point to conduct any sort of rescue operation, but you can see people standing or coming out of the window and then trying to climb down. Four people have been injured, 15 dead. We're going to continue getting you all of those images. Chief Minister Yogi Adityanath will be visiting the hospital next, meeting with the four who were injured in this blaze. I'm going to continue getting you all of those details here on India Today. That's all we have time for in this edition of Super 6. I'm wrapping up with these images.

0: perfumes by Chola, a fragrance that lasts longer than 10 hours. So I can be myself a little more. French perfumes by Chola. For him and her.
1: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
1: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: this was as error-free and as flawless as it can be. We took every necessary step to do a balance between security and convenience of students, because that's always two things that one has to balance. That perfect balance was ensured. We worked with all agencies, all security agencies, to ensure that we are able to conduct an examination which is not only glitch-free, but which is also a zero-error examination with zero tolerance for any malpractice.
1: 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है, और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: French perfumes by Chola, a fragrance that lasts longer than 10 hours. So I can be myself a little more. French perfumes by Chola, for him and her.

0: We have breaking news coming in from the Lucknow fire incident. Shocking lapses emerge in the deadly fire that claimed 15 lives. As per preliminary information, after the fire broke out, the gate of the building got locked automatically, preventing those inside from escaping and leaving them trapped. Probe also indicates that the building did not have an emergency exit. Due to insufficient space on the staircases, many people jumped from windows to save their lives. According to official records, the building where the fire broke out had originally received approval from the Lucknow Development Authority as a residential property. However, it was allegedly converted into a commercial complex in 2014. An investigation is underway and the administration is examining the building's safety measures and compliance with fire safety standards. This is the latest update that we're getting in from the tragic incident that happened in Lucknow. 15 lives were claimed, and that was all because there were no emergency exit. People literally had to jump out from the building. For more on that, we have Ashish Srivastav joining. Ashish, hume pata chal raha hai ki building ke jo exits the wo hi band the aur logo ko jump karna pad raha tha wahan se bahar nikalne ke liye.
1: बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है सामने, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि एग्जिट पॉइंट था ही नहीं पूरी बिल्डिंग में, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद बच्चों को दिक्कतें हुई। क्योंकि अगर एग्जिट पॉइंट होता तो शायद वहां से निकल सकते, इसलिए जो विंडो थी उसको तोड़ा गया पहले, और तोड़ने के बाद ये समझिए कि बाहर निकलने के लिए जब कोई रस्सी नहीं थी, तब वहां के जो इलेक्ट्रिक वायर था उस वायर को पकड़कर बच्चों तोड़ के बाहर निकले हैं। और उसी बीच में एक जो छात्र था वो कूदता है, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। काफी लोग तो अंदर जल गए, क्योंकि जिस तरीके से वो निकल नहीं पाए, स्मोक इतना ज्यादा हो गया और जीने से निकलने की कोई जगह नहीं थी। ऐसे में खिड़की तोड़कर बाहर निकलना ही था, इस वजह से जितने लोग एक एक करके उतर पा रहे थे उस लाइन से, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर था उससे उतर पाए, जो लोग नहीं उतर पाए वो अंदर ही फंस गए और उनको मौत का सामना करना पड़ा। तो ये फायर एग्जिट विंडो नहीं थी वहां पर, ना ही कोई ऐसा गेट था। सबसे बड़ी बात बायोमेट्रिक था वहां पर, जिसकी वजह से गेट भी लॉक होना बताया गया कि लॉक हो गया, और जिसकी वजह से बच्चे और भी अंदर नहीं निकल पाए, यानी कि ये पूरी तरीके से बिल्डिंग के अंदर वो पैक हो गए।

0: थे कि मदद की जाए, लेकिन आरोप है कि मदद भी नहीं की गई। उस दौरान पुलिस ने भी जो फोन उठाया कि पहुंचने की बात कही कि पहुंचेंगे, तो ऐसे हालात में जो तकरीबन 30 बच्चे वहां पर मौजूद थे वो इन हालातों से रूबरू हो रहे थे और उनको ये नहीं पता था कि वो जीवन का बचेगा कि नहीं। और वो बार बार यही बस कूदने का, क्योंकि जो उसमें लड़कियां थी, युवती थी, वो इतनी ऊपर से जंप नहीं कर पा रही थी। 2 मंजिला पर ये पूरा ऑफिस था और वहां से कूदने में भी उनको डर लग रहा था, इस वजह से वो तार के सहारे उतरने की कोशिश कर रही थी। और पूरे ऑफिस में, घर पूरा जो ऑफिस एरिया था उसमें धुआं भर गया था, स्मोक की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी और उसके अंदर बेहोश हो गई। तो बेहोश होने के बाद ही उसके अंदर ही जल गए, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाया और यही हादसा बड़ा रूप ले लिया। तो शायद अगर फायर सेफ्टी होती वहां पर, या फिर वहां पर फायर के अपने इक्विपमेंट होते, या इसके अलावा वहां पर अगर और सुरक्षा मालिक होते तो शायद ये चीज हो गई होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो बिल्डिंग थी वो भी रेजिडेंशियल में थी, जहां पर पूरी तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। तो एक तो फायर की कोई भी उपलब्धता नहीं थी इक्विपमेंट की, दूसरा रेजिडेंशियल एरिया में, तीसरा एग्जिट विंडो नहीं थी, जिसकी वजह से ये 30 बच्चे अंदर फंसे, जिसमें आप सोचिए 15 लोगों की दर्दनाक अंदर मौत हो जाती है और वो सभी अंदर घुट घुट कर मरते हैं, बाहर चलने की उनके पास जगह तक नहीं बची है, कैसे वो बाहर आए।
1: ओके आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पास और खबर आ रही है लखनऊ फायर इंसिडेंट से रिलेटेड। Now, after taking stock of the fire situation on the ground, Defense Minister Rajnath Singh visited the KGMU hospital. He interacted with the injured and the family members. These are the visuals that we're getting in. Rajnath Singh, he's at the KGMU hospital where the injured are currently seeking treatment. He met with the victims of this tragic fire that happened in Lucknow. We just heard of how the students, most of these people in the building were young people, they were, most of them were students, and 30 of them were there at the point, as Ashish tells us, and 15 of them actually lost their lives. And there were tragic scenes unfolding where they were in fact getting down with the help of the electricity wire. And this is Rajnath Singh now meeting them at the hospital, listening to what he said.
2: बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है
3: इस मौके पर 15 लोगों की जान चली गई
2: और मैं सभी परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और पूरे मामले की जांच जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा वो कराई जाएगी और इसमें यदि किसी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी, यानी पूरी तरह से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाएगी, जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो।
1: Right, that was what we got from Rajnath Singh. He's expressing grief because several people, 15 people lost their lives, most of these are students. Remember, this was a building which was supposed to be residential, but then there were major lapses because it converted into a commercial complex. And multiple floors were running, multiple things. There were animation studios being run out of the same building and there were no exits. The exits were blocked and so we see that 15 young lives were claimed because of major lapses witnessed in this Lucknow building. A massive fire at a commercial complex in Lucknow's Aliganj claimed 15 lives, leaving several others injured. Chief Minister Yogi Adityanath visited the tragic site and reportedly pulled up fire department officials, directing authorities to ensure that those responsible for the tragedy shouldn't be spared under any circumstances. Did negligence lead to the loss of lives? Here's the report.
4: A tragic afternoon in Lucknow. A massive fire breaks out in a commercial complex in Aliganj, housing a gaming zone, a coaching center, and a pet store. Turning an ordinary day into a scene of chaos, panic, and irreversible loss. In minutes, smoke engulfed the building, followed by screams and a desperate struggle for survival. Several lives have been lost in the heartbreaking tragedy. Most of them young students. The images difficult to watch and even harder to forget. In a desperate attempt to survive, a student

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।